मशहूर डाकू जेल चो फरार होके एक बीड़ विच बैठे अपना शिकार भुन रहे हैं। शाम कौर नौ दी एक औरत नू रस्ते विच कुछ बदमाशा ने लुट लिया। औरत दे रोण दी आवाज सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। अगों बाद दी कहानी।

0: पिछले 25 साल तो राजनीति की गहरी समझ रखने वाले ते ब्रैम्पटन नू चंगी तरह समझन वाले अमन शर्मा हुन ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे कैंडिडेट ने।
1: की तुसी चाहुंदे हो एक ऐसा काउंसलर जो तुहाडी गल सुने ते तुहाडे मुद्दे ते डट के काम करे, ता याद रखो अमन शर्मा रीजनल काउंसलर।
0: प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक दे स्पीड बम्प्स, पार्किंग दी प्रॉब्लम, भीड़भाड़ वालियां सड़कां, बाइक लेन्स, नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी ते
2: प्रोग्राम सुन वाले सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542947 8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहबर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7763

होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600। हेलो ब्रो, किथे है तू?
1: मैं क्लाइंट नु मिलने जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स पे बैठ जाइए।
0: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना, नो प्राइवेट बूथ्स ने फुल प्राइवेसी मिल दी है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जांदी है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कॉल करो 9054512600, 9054512600।
2: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-8604-84-8401।
3: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
4: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: हाँ जी सत श्री अकाल।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, मैनूं ना डक्ट क्लीनिंग वाले दा नंबर चाहिदा सी जी।
0: डक्ट क्लीनिंग दा नंबर चाहिदा सी, मेरे को वैसे है नहीं, मैं ना थोड़ा नंबर नोट कर लैनी आ, सो मैं देख के फिर थानू मैसेज कर दूंगी।
1: ठीक है जी।
0: ठीक है जी, मैं थोड़ा नंबर नोट कर लिया, सो फिर मैं थानू, क्योंकि मेरे को पहला सीगा, सो मैं देख के फिर थानू भेज दिंदी आ। ठीक है जी।
1: ओके थैंक यू जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। ते जड़ियां सुइयां अगे पिछे करदे आ, थानू किदां लगदा, वधिया लगदा कि नहीं वधिया लगदा, कि एक स्टैंडर्ड टाइम ही होवे?
1: नहीं वधिया नहीं लगदा, स्टैंडर्ड टाइम ही होना चाहिदा, क्योंकि जिने दिन चढ़दा छपदा आपां नूं समय दे अकॉर्डिंग ओह चीजां नाल जिवें आपां ना हो जांदे आ वी हुण जल्दी दिन चढ़दा, जदों इह नैचुरल चीज नूं चेंज हो जांदा फिर ओह वधिया नहीं लगदा।
0: ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1: ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4-4:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

0: दिवाली ब्रांड्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: बिल्कुल जी, हैप्पी दिवाली ते मनाओ, खाओ पियो, मौज मनाओ। ते लो जी, मैं नंबर एक थानू दवा बड़ा वधिया। ए हैगा नंबर कैन ट्रक दे जगतार रमन जी दा। तुसी इन्हां नू कॉन्टैक्ट करना जी, जे तुसी चाहुंदे हो ना बहुत वधिया थानू जॉब मिले, तुसी सिटी च ट्रक चलाउणा, सिटी तो बाहर जाना है, तां वी तुसी कैन ट्रक दे जगतार रमन जी नू कॉन्टैक्ट करना। नंबर हैगा इन्हां दा 647-292-5757 ते गलबात करो। ते ईगल ट्रक सेल्स दे बिल सेखों जी दे कोल तुसी ट्रक लै सकदे हो। ट्रक वी नवें नकोर ते हुंदे सैकंड हैंड आ, पर नवें वर्गे हुंदे आ। सो तुसी इन्हां नू कॉन्टैक्ट करो ते तुहाडे जिहड़ा वधिया ट्रक तुहानू मिल सकदे आ। ते फाइनैंसिंग ऑन द स्पॉट है, 416-819-6000 ते गलबात हो सकती है। तो जे तुसी चाहुंदे अपने ट्रकां नू वॉश करवाउणा अंदरों बाहरों, ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश नू तुसी कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि 24/7 सर्विस है जी इन्हां दी। इन्हां नू तुसी कॉन्टैक्ट करो ते फिर तुहानू यह जिहड़े ट्रक है धो सवार के कोई खराबी है, उन्हां च कोई लीकेज डैमेज वो भी ठीक कर देंगे। नंबर नोट करो 905-452-9955। ते स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ नू तुसी कॉन्टैक्ट करना जे तुसी चाहुंदे हो बहुत वधिया थोड़ी गड्डियां दी डेंटिंग पेंटिंग होवे ठीक, जां तुसी कोई भी खराबी उन्हां च हैगी है, या जिवें ऑयल चेंज वगैरह कुछ करवाउणा हुंदा कोई भी। सो तुसी इन्हां नू कॉन्टैक्ट करो ते इन्हां ने बड़ा वधिया थानू जिहड़ा हैगा गड्डियां नू ठीक कर देना, क्योंकि चार लोकेशन तो सर्व करदे आ। नंबर तुसी नोट करो जी, स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनी दा 905-874-9978 ते तुसी कॉन्टैक्ट कर सकदे हो। सगनदीप नू कॉन्टैक्ट करना वधिया सोफे बनाउण दे लई, और सोफे इन्ने कमाल दे क्योंकि किसी भी प्रोविंस दे विच तुसी रहिंदे हो, वैबसाइट विजिट करो, सोफे पसंद करो ते ऑर्डर करो ते उत्थे ही तुहाडे सोफे पहुँचा दिते जाणगे। नंबर हैगा जी सगनदीप दा 905-799-8877-9057-9988-77 ते जिहड़ी गल्लबात है वह की जा सकती है। ते जिवें आपां ट्रकां दी गल कर रहे हां, ते एक मैं तुहानू जरूर कहूँगी कि तुसी ना जेकर चाहुंदे हो भी तुसी ट्रकां दी इंश्योरेंस करवाउणी है, यानी कि जे तुसी ओनर ऑपरेटर हो, तुहाडे कोल अपना ट्रक है, तुसी अपने वास्ते इंश्योरेंस ट्रक इंश्योरेंस जिहड़ी उह लैणा चाहुंदे हो, ते तुसी चाहे लोकल चलाउंदे हो, चाहे कैनेडा वाइड चलाउंदे हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर ते जांदे हो, बेसिकली तुसी अपनी अथॉरिटी ते काम करना चाहुंदे हो, ते तुसी गुणतास नू कॉल करनी है। 647-919-1000 दो नंबर है। ते जे तुहाडे कोल 5 या 5 तो ज़्यादा ट्रक है ते तुहाडी रिन्यूअल आ रही है, तुसी ट्रक दी पहली बार इंश्योरेंस करवानी है, तां वी तुसी कॉल करनी है गुणतास नू। और इन्हां कोल एक कंपनी है जिहड़ी कि स्पैशल डिस्काउंट तुहानू दिंदी है ते तुहानू बहुत वधिया रेट मिलेगा। गुणतास दा नंबर नोट कर लो 647-919-1000 दो, ते मेरा नंबर नोट कर लो 647-765-2340। ते बई लॉटरी जे नहीं पाई पा लो, लोटोमैक्स जैकपॉट पता किन्ने दा हो गया, $90 million दा, और ये कहते हैं बिगेस्ट लॉट।
0: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, द GTA एंड द वर्ल्ड एट am530.ca। The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-680.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज और जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: जिंदगी हैरानियों नाल भरी हुई है पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विचों एक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट इंश्योरेंस तो कीती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसी अपनी लाइफ दी सारीआं इंपोर्टेंट चीज़ां नूं प्रोटेक्ट कर सकते हो। ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल भी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे आं तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड। ते तुसी कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535।
3: ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं। लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

my god, what a song, man. I love it. Beauty. Oh, oh, oh. कैसा प्यार है इस गीत में, कैसा रोमांस है, कैसा इश्क है, कैसी तांग होती है ना किसी को मिलने के लिए, ये वैसा गीत है भाईजान।

अगर यहां से निकल कत्ते लो की हाल है। हेलो जगराज सिंह जी। हेलो जगराज सिंह जी बोलते नहीं, कमाल की गल, साड़ी कुआली विच रकाती चक यार।

0: वाओ कैसे यार लफ्ज है और प्यार तो बिना दुनिया सारी सुननी है और ये बड़ी जरूरी चीज है और पटा साहब अखीर ते होर की कहना चाहोगे सर
1: मैं हजी जी अपने थोड़ी अपने उन्होंने सोते ना गल करनी चाहूंगा जो कि साडे फील्ड नु ज्वाइन करना चाहते हैं
0: हाँ
1: उन्हें मतलब जे अपने उन्होंने को लाइसेंस हैगा जां वो नवा लाइसेंस लेना चाहते हैं वह तकरीबन हजी जी असं उन्होंने हर तरह हैल्प करा जे बहुत सारे सोते लाइसेंस लें लै के रखे आ पर वो कम नहीं कर रहे उन्होंने मतलब सारे सारे जी बहुत सारे सोते इदा भी जिन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराई जा रहे पर वो गाह काम नहीं कर रहे पर वो भी जो सारे सोते सू अगर ज्वाइन करते हैं तो असं उन्हों की बिल्कुल हैल्प कर सकते हैं जो सोते जिन्हों को लाइसेंस है अपने अपने उस खुश नहीं है असं उन्होंने भी हैल्प कर सकते क्योंकि साढ़े उस हजी जी किसी तरह की कोई भी फीस नहीं हैगी कोई डेस्क फीस नहीं हैगी मतलब कोई रूम फीस नहीं हैगी बाकी जो थोड़े ट्रेनिंग्स वगैरह है सारिया फ्री है हाउसिंग ट्रेनिंग ज अपने जो भी तो अपने कंपनी की ट्रेनिंग जो कहने मैंने वन टू वन किसी कंपनी की ट्रेनिंग चाहिए आ वो भी साढ़े जो ट्रेनिंग सारिया फ्री है तो हरी जी इस वास्ते क्योंकि जिस तरह तुम ऑफिस में ज्वाइन कर दिया असं तुम्हें एजेंट नहीं है करते साडे ऑफिस वालों तुम्हें कोई चेक इशू नहीं किया जाएगा जो भी जिस कंपनी का लिखोगे वो कंपनी ही तुम्हें पे करेगी मतलब तुम फिर आम थोड़े कई बार दिमाग में होता जी पहलियाँ पांच पॉलिसियां वो कंपनी लिखोगे तुम लिख सकते बिल्कुल तुम अपनी पहली पॉलिसी खुद ही भी लिख सकते हैं बाकी हर चीज साढ़े सोते किसी तरह की भी कोई इंश्योरेंस चाहिए आप लाइफ आ क्रिटिकल आ मॉर्गेज आ सुपरविजन इंश्योरेंस है विजिटर मेडिकल इंश्योरेंस आ ट्रैवल इंश्योरेंस आ जा कोई इन्वेस्टमेंट हैगा आर ई एस पी हैगी आर डी एस पी हैगी अपने टी एफ एस अकाउंट हैगा फर्स्ट टाइम होम वार प्लान हैगा ये सब वास्ते हर चीज एक एक नंबर जिथे इंश्योरेंस का नाम आ गया तुसीं सिर्फ कॉल कर सकते हैं
0: जी
1: 647-300-3100 647-300-3100
0: ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ 70 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 11 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਆ
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ
1: ਤੇ
0: ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ 647-300-3100 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪੱਡਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੁਆਲੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਲੀਵ ਮੀ ਆਰ ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।

0: Talk1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Hello.
2: Kataria Tours and Travel?
1: Hanji, Kataria Tours and Travel.
2: India diyan tikta chahidiyan si.
1: Oh, India ki, tusi jithon marzi diyan tikta lai lo. India kithe jana?
2: Char tikta Delhi diyan, te do Amritsar diyan. Mil jaangiyan?
1: Mil jaangiyan, bilkul mil jaangiyan. Delhi, Mumbai, Amritsar, eho ta saadi speciality hai. Bas dasso ki tikta kado diyan chahidiyan ne. Te haan, special tour packages te honeymoon packages vi saade kol available ne.
2: Par usse man service te sab to vadiya rates le, ikko ikna. Kataria Tours and Travel. Booking le, aaj hi call karo 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: 1-6-8-1-7-6-5-0-0.
1: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
2: 11 AM to 6 PM All drinks 50% off. Tikka Junction Brampton te call karo 647-429-4040. Tikka Junction Brampton.
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10।
4: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
5: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਆਪ ਬਤਾਓ ਕੈਸੇ ਹੋ?
1: ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਪਾਵਨ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈਆਂ, ਆਪਕੋ ਸੁੱਕੀ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਮਾਓ ਕੋ ਬਹਿਨੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਹਮ ਲੋਗ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਏ ਅੱਛੀ ਹੀ ਖਬਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਰਿਨਿਊਲਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਥੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਨਿਊਵਲਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਨਿਊਵਲ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗ ਰਿਨਿਊਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਛੇ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਨੇ ਰਿਨਿਊਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੋ ਉਸਕਾ ਆਪ ਕਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੋ?
1: अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं जो समझा हूँ कि जिनकी रिन्यूवल्स लेट आ रही हैं, जिनकी रिन्यूवल 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद है और उनकी उन्होंने जो है पैसों की जो है वो जरूरत पड़ गई है जी, राइट? तो हाउ माई सर्विसेज, व्हाट इज माई एडवाइस ऑन दिस, राइट? सो बहुत ही चंगा सवाल है, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और उससे पहले ये बताता चलूं कि यस, नेक्स्ट प्राइम रेट जो अनाउंस होने वाला है एंड ऑफ अक्टूबर में है, तो मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन ये है कि रेट बढ़ेगा वेरिएबल रेट का, ठीक है? तो ये बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज्यादा मिक्स्ड हुई हुई है। ओके, आई एम कमिंग टू द योर पॉइंट और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि फिक्स रेट और वेरिएबल रेट के क्या फ्यूचर क्या है और वी गोना टॉक अबाउट इट। अभी हम बात करते हैं जिनके रिन्यूवल्स देखिए 2028 में 29 में है, अगर वो ब्रेक करेंगे तो उनको पेनल्टी चार्ज होगी, ठीक है? स्पेशली जिनकी फिक्स रेट है, क्योंकि काफी लोग जो है वो रीफाइनेंस रिन्यूवल अभी लेट है, राइट? दे डोंट वांट टू रिन्यू नाउ। तो उसके लिए अगर पैसों की जरूरत है, 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपने तुहाड़े बैंक नाल जाओ जी, इनू बैंक नो पूछो मैनू होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे मिलेगी, राइट? सो बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन योर क्रेडिट, आपकी घर की वैल्यू 65% लोन टू वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मिलियन का घर है तुहाड़ा और 6.5 लाख की तुहाड़ी मॉर्गेज है तो उसी बैंक नाल जाओ, बैंक नो रिक्वेस्ट करो अगर आपको होम एक्विटी मिल सकती है। अगर तुहाड़ा क्रेडिट एंड इनकम चंगी है जी तो उन्हू मिल जाएगी। पहली गल तो ये हो गई। अगर सवाल यही है किरण जी, अगर तुहाड़ी ऑलरेडी 70-75% जो है तुहाड़ी मॉर्गेज बैलेंस है और तुहानू जो है तुहानू चाहिए होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, तो की कैसे होगी, राइट? तो उसका यही आंसर है कि आपको बैंक तो नहीं करेगी बट बैंक के अलावा कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो बेस्ड ऑन दी एक्विटी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है। ओके, सो वंस अगेन, पहले तुहाड़े बैंक नाल अप्रोच करो, बैंक अगर आपको थम्स अप करता है वेरी गुड, अगर बैंक नाल नहीं होती है तो मेरी तरह किसी मॉर्गेज प्रोफेशनल को अप्रोच करें। बेस्ड ऑन दी एक्विटी मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दिलवा दूंगा, 1 साल से लेके 5 साल के लिए आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड डेट्स पे करने हैं इससे लाइन ऑफ क्रेडिट से, या आपको जोर पड़ गई जी आपको बेसमेंट बनानी है ना, और साथ साथ बच्चों की वेडिंग अगर दिसंबर में कोई प्लान है या समर में प्लान है, आप चाहते हो कि जब जरूरत पड़े तभी मैं पैसे निकालूं तभी इंटरेस्ट चार्ज हो, तो यस, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट वुड हेल्प यू। देखिए होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ये घर के ऊपर ही मिलती है, राइट? बेस्ड ऑन योर इनकम और क्रेडिट पे, अगर आपका बहुत अच्छा इनकम है बहुत क्रेडिट है तो उन्हें बैंक नाल अप्रोच करो, अगर ये थोड़ा क्रेडिट जो है चंगा नहीं है और इनकम नाल इशू है तो यस, गिव मी अ कॉल, आई एम हेयर टू हेल्प यू। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 647-512-7000, 647-512-7000। जीरो जीरो
0: बिल्कुल मुकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और एक है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम घर परचेज कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बैड क्रेडिट है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे?
1: डेफिनेटली, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी की देखें बैड क्रेडिट है या किसी ने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी करी है, अगर आपको साथ साथ होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो चांसेस हैं बैंक के पास जाओगे बैंक नहीं देगा आपको, है ना, 99% नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी है। अच्छा, काफी लोगों के माइंड में ये कि अब आप तो आपको सेकेंड मॉर्गेज भी नहीं मिल सकती, लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं मिल सकती है, तो आंसर ये है कि मिल सकती है किरण जी, है ना, ये मिल सकती है आपको, क्योंकि आप कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं बेस्ड ऑन द एक्विटी आपके घर पे आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है। उसके लिए आपका इनकम होना जरूरी नहीं है या क्रेडिट होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर आप लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे दिलाएंगे, हमारी इनकम खराब है, क्रेडिट खराब है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक इज नॉट द ओनली ऑप्शन। बैंक के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बेस्ड ऑन दी एक्विटी आपके घर पे, एक्विटी होनी चाहिए, बस ये शर्त है। घर की $1 million है और 5 लाख का मॉर्गेज है, तो मैं 2 लाख से लेकर $3 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट अरेंज करके दिला सकता हूँ। कंज्यूमर प्रपोजल पे करना है, बैंकरप्सी की अमाउंट पे करनी है, उस अमाउंट से ये अपने क्रेडिट कार्ड पे करने हैं, दो दो तीन तीन साल से अगर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया वो पे करना है, तो यस आई एम हेयर टू हेल्प यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी ने मॉर्गेज मिस करी है उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट करें, 1 महीने की 2 महीने की या जॉब नहीं है जाने वाली है आपको लग रहा है, कॉन्टेक्ट करें बिफोर इट्स बिकम टू लेट, गिव मी अ कॉल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग चाहिए और जो है वर्क परमिट प्रोसेस में है साथ साथ जो है, तो आप मुझे कॉल करें, आई कैन अरेंज अ कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग। अपना घर बनाना चाहते हैं, पैसों की जोड़ पड़ गई है, तो यस आई कैन हेल्प यू। सो एनी सिचुएशन गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट, नंबर टू कॉल मी 6475127000। किरण जी और सुखीपा जी, वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि आपको, हमारे सारे प्यारे लिसनर को बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी हैप्पी नवरात्रि, एंड हम लोग जो है फिर दोबारा जो है आपसे कल या फ्राइडे को बात करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू किरण जी,
0: नो प्रॉब्लम जी। सो तुसीं इन्हां दे नाल गलबात कर ली, नंबर 6475127000 ते जिहड़ी है जी जानकारी किसी भी तरीके की मोर्गेज संबंधी लै सकदे हैं, घरां दे विचों पैसा कढ़ना या तुसीं जिहड़ा है जी बैड क्रेडिट हैगा, सो इट्स ओके, ही कैन हैल्प यू। एंड अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है जी किया 427QW दे सुगना भी जिहड़ा है जी हो सकदे आ गलबात, क्योंकि इन्हां दे नवां शोरूम जिहड़ा जी खुल्या किया 427 दा, बहुत ही शानदार जिहड़ियां जी किया दीआं गड्डियां, तुसीं एक बारी शोरूम जरूर विजिट करना किया 427QW ते, तेना दा नंबर 6474615001 ते जेड़ी जी गलबात कीती जा सकदी है। और एक नंबर मैं तुहानू होर जांदे जांदे जरूर सांझा करना चाहूंगे, ये नंबर हैगा है अंजुम कुरैशी जी दा, जेड़े कि एक्सीडेंटल क्लेम बेनीफिट दे विच तुहाडा पूरा पूरा साथ दिंदे ने, रब ना करे रोड ते जा रहे ने एक्सीडेंट हो जांदा ने, उस सिचुएशन दे विच तुहानू अंजुम कुरैशी जी पूरा तुहाडा जेड़ा है जी पेपर वर्क तो लैके क्लेम प्रोसेस तक साथ दिंदे ने। इन्हां दा नंबर 4165700157 ते जिहड़ी जी तुसीं गलबात कर सकदे आ। और हुण थोड़ी जी गलबात जिहड़ी जी आपां इलेक्शंस दे रिलेटेड भी कर लैने, क्योंकि जिहड़े जी इलेक्शंस ऑलमोस्ट जिहड़े है जी एडवांस वोटिंग जिहड़ी जी ओपन होई हुई आ, सो हुण जिहड़े जी एडवांस वोटिंग दे विच 16 ते 17 वाला जिहड़े जी दिन रह गया, ते एक्चुअल इलेक्शन डे अक्टूबर 26 नूं हैगा है, ते तुसीं वार्ड 9 ते 10 चों हरसिमरन सिंह जिहड़े जी रीजनल काउंसलर दे लई खड़े ने, तुसीं इन्हां नूं भी वोट पा सकदे ने। बलजिंदर सिंह नाहल वार्ड 9 10, तुसीं इन्हां नूं भी जिहड़ा जी वोट पा के अपना जिहड़ा जी अगला कैंडीडेट बना सकदे ने। और किसी भी कैंडीडेट बारे कोई भी जानकारी लैने वे, तुसी केड़े भी बवार च रहिंदे होणे, साडे कोल सारी इनफॉरमेशन जिहड़ी जी अवेलेबल हैगी आ, और आपां तुहानूं सारी इनफॉरमेशन प्रोवाइड करदे आ 9057990999 ते। सो बिल्कुल जी, कल नूं मिलांगे इक नवें दिन दी शुरुआत दे नाल और इक वधिया प्यारे जे रेडियो प्रोग्राम नाल, तद तक तुसी सारे रहो जी वधिया ते चढ़दी कला दे विच।

0: लवली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन लूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा देश स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार
4: Solution to promote your business. Des Pardes, Prime Time Radio and TV. Tohade Ang Sang, 24 Kante Satto Din. Huntak Des Pardes, Prime Time Radio, Hazara Hi Business Di Grand Opening Live on Location Nal Karwa Chukye, Te Karwa Raya Hai. Impossible is nothing. Tusi Bhi Apne Business Vich Vada Karan Vaste, Des Pardes Radio Da Live on Location Friday, Saturday Karwao. For bookings, call Tajinder Sidhu at 416-725-2551. 416-725-2551.
5: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
6: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
5: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
6: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
7: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
6: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
7: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
6: 416-509-1500

0: हिट स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन ब्रूक ट्रेड फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ

0: होगी। मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताके पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेस इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलते ने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597।
1: मैं थोड़ा अपना वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।